0: अस्सलाम वालेकुम, हम ज़मीन के रहने वालों की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं।
1: सलाम आता।
2: Hola y saludos a todos.
3: Greetings and friendly wishes to all who may encounter this voyager and receive this message.